ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच ते डिनर सारा कुछ है स्वीट्स ते स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छू मंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वरगा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 2023@gmail.com ते

मां बोली है मामा वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मामा वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुन्ने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बाहां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंडरू जांदे रावां वर्गी, आओ इस दी शान वधाइए एदे सोले रल मिल गाइए, मां बोली ही बोलदे रहना नवी पीढ़ी नूं इह समझाइए, क्योंकि बोली ना रही तो कवितावां रुल जाणियां, मावां दियां लोरियां दवावां रुल जाणियां, एडे महंगे मुल वाली चीज ना गवा दिओ, वेखिओ पंजाबी ना भुला दिओ, वेखिओ

0: ब्यूटी इंडस्ट्री से दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर के ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो।
1: दिस इज AM 530 CHLO AM सर्विंग ब्रैम्पटन मिसिसागा टोरंटो द GTA एंड द वर्ल्ड एट am530.ca।
2: पंजाबी
3: लहरां प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
2: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
3: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
2: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
3: चौड़ियां छातियां वाले गभरुआं नूं
2: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
3: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
2: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
3: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच।
4: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
5: GTA de home buyers miss na kar jayo. Paradise Developments sell kar rahe ne town home ate detached kar Milton, Brampton, Seaton ate Whitby de vich. Keemat sirf 629,990 dollar ton te naal 130,000 dollar tak de designer finishes. HST rebates ate bahut vadiyan savings da fayda lo. Aaj hi visit karo paradisedevelopments.com paradisedevelopments.com।
6: जदों किसी दी नजर धुंधली होनी शुरू हो जावे जिंदगी दे बहुत पल हौली हौली खो जांदे ने गड्डी चलाउणी मुश्किल टीवी देखना औखा ते अपने प्यारियां दे चेहरे भी साफ नजर नहीं आउंदे इस लई बहुत लोकां ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है एह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नु भी कस्टमाइज कर दिंदी है बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल कई पेशेंट्स कहंदे ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जांदी है क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता आज ही कॉल करो लूमिया ऑफिसेज इन वॉन डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी डॉक्टर ਸੰਗੇੜਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਈਮੇਲ ਕਰੋ punjabi@lumia.io punjabi@lumia.io 289-982-9597 289-982-9597
7: मैं थोड़ा अपना वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा

0: तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: लो जी, फिर अपना टेस्ट भी कर लगे हैं, दिल कर रहे हैं, ताजी का सिफ्ट करने लगे हैं, जरा सुन के।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।

आइए पाई मन तन शीतल होई संत हो हर हर नाम ते आई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियडा फल पाई रहा सतगुरु पुरताप आया अपनी कृपा धारी पात्र हम

रहा ताप गया प्रभाव मिटाया जन की लाज रखाए साथ संगत ते सब पल पाए सतगुर के बल जाई।

ईश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजा वेद माता जगन माता लोकिच्छिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्व बंध्या महाभोरिमा शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता ग्राही मां शरणागतम चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभव तारिणी प्रकटीता साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनम् तमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या ग्राही मां शिव गेहिनी श्री कुलदेवी।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और आपका लिए जो वीकेंड है, अभी सर्दी की शुरुआत हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड, तो अब जब आप बाहर निकलें तो थोड़े बहुत अपने आप को अच्छी तरह से ड्रेसअप करके निकलें, तो इसी तरह ही हमें ठंड का अभ्यास होता है। लेकिन ये है कि वीकेंड में धूप खिली रहने वाली है, तो मौसम लॉन्ग वीकेंड, अगला जो वीकेंड है लॉन्ग वीकेंड है, तो उसमें थैंक्सगिविंग का लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। तो आपको अब इस हफ्ते आपके लिए आपने 2 अक्टूबर का दिन है, तो बड़े महान दिन है आज, महात्मा गांधी जी का उनको याद किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, राष्ट्रपिता हैं। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आपका बढ़िया सा मनोरंजन करते हैं। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, या फिर आपने टीवी बढ़िया लेना है, अब महोत्सव सूजन शुरू हो गया है, दिवाली आने वाली है, लोग रहे हैं, तो आपने अगर अपने घर में बढ़िया फ्रिज लेके आना है, बढ़िया फर्नीचर लेके आना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक पर जाइए और खूब वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया स्पेशल्स मिलेंगी। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया जाता है, तो उन्होंने बहुत अपने देश के लिए, देश के नेता थे, और उनका जो उनको याद किया जाता है, उनकी ग्रेटनेस, उनकी सिंपल साधारण, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो उन्होंने अपना जिंदगी को बड़ा सिंपल सा रखा हुआ था। तो बड़ा उन पे ऐसे नेता देश में हुए हैं, तो हमें जरूर उनका गर्व होता है, जब भी उनका दिन आता है तो हमें एकदम बहुत खुशी महसूस होती है। तो आइए आपको एक बढ़िया सा गीत भी सुनाते हैं। तो पहले अगर आप मूव होना चाहते हैं, तो एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव कराने के लिए, तो इसलिए फिर आपने अगर मूव होना है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और साथ ही आपको आपके लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, तो बहुत बढ़िया आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप उनको कॉल करिए, 416-524-4416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी किस्म के भी, अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, अपने कोलिजन का काम करवाना है, तो आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गौर रोड पे खुल चुके हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो पर mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हैं।

0: एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 4% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट हम 3 लोकेशन पर सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्गिन रोड, ईटोबीको। मेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो
2: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

जी एक बार फिर आपका स्वागत है घर संसार में। तो इसी तरह हम उनका जो दिन है वो मनाएंगे। आप हमारे साथ बहुत जुड़े रहिएगा। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुनाएंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी किस्म की भी आपके घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए तो इंटर मॉडल एंड्रेपर रोड में मौजूदा दूसरी लोकेशन में गोल्फ में दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कीजिए 416-524। उनका जो आपके लिए लोकेशन हैं दोनों वहाँ पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 905-700-0045 पर आप कॉल कर सकते हैं। दिवाली से पहले ही आप बुक कर लीजिए और जो भी आपको सामान मंगवाना है तो वो आप पहले से ही ऑर्डर बुक कर दीजिए, चाहे नया टीवी हो या फिर बैक यार्ड में आपने बढ़िया फर्नीचर लेके रखना है तो आप कॉल कीजिएगा 905-799-0045। तो ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि वहाँ पे आप मास्टर कोलिजन डिपो खोल चुके हैं। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं तो आप गोर रोड पे जाइएगा और मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ आप ले सकते हो। अगर आप थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के आसपास के इलाके में रहते हैं तो इलेक्शन आपके लिए 26 अक्टूबर को है। तो साद महमूद आगे आए हैं, वो कम्युनिटी की काफ़ी हर बहुत सालों से नियाग्रा इलाके में मदद करते आ रहे हैं। तो आप वोट डालनी है तो आपको ये सोचना पड़ता है कि हमारे लिए कम्युनिटी में इस तरह के जो काम है लोग करते हैं भलाई के तो वो कौन करता है, मदद के लिए कौन है। तो आप उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो अपना हक है, आपका वोट जरूर डालिएगा।

जी हाँ, तो ये भूले बिसरे गीत है, एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहे हो, खास करके सुबह सुबह में जब आप इस तरह के गीत सुनते हो तो आपके लिए आपका जो सोल होती है वो बड़ी खुश हो जाती है, तो आपका दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो चलो इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप पूजा का सामान लेना है तो आप जानते हैं ये सजावट एंड पूजा हट। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एसके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कीजिएगा और ट्रक अपना बुक कर लीजिएगा, और बहुत सारी उनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से वो पहुंचाते हैं। तो आप 416-524-604 पर आप कॉल कर सकते हैं, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स, बहुत बढ़िया सर्विस, क्वालिटी सर्विस है उनकी, तो आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है, न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट ब्रू ब्रिटानिया पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो लाइव कुकिंग करवानी है 905-814-1803-905-814-1703 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अपने दिवाली के लिए अपने खास प्रोग्राम करना है तो आप उनको बुक कर लीजिए 905-814-1703, न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रोकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ते शुरू। हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई वधिया डील लभ के देणगे। ते जे तुसी कोई भी किसे तरह दी भी जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड है तो ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तो फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो अब अगर अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, अभी आपके लिए फेस्टिव सीजन है, तो आप आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो फिर नवरात्रे आएंगे, तो इस तरह से जो महाउत्सव सीजन है वो आपके लिए चलता रहेगा। अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा भूला बिसरा गीत है, तो वो भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आप बस जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम से, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

थी थी चमेली आपकी, तो बड़ा प्यारा गीत है और मूवी भी देखने को मिले तो बहुत ही खूबसूरत मूवी में बड़ा बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है ये गीत। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब अगर आप अपने लिए किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। महाउत्सव सीजन अभी शुरू हो चुका है तो आज आपके लिए बड़ा ही महान दिन है, 2 अक्टूबर का दिन है तो सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये दिन। आपने बहुत सारा वीकेंड है अभी, तो वीकेंड में सभी लोग महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ मनाएंगे, किसी ना किसी ढंग से अपने अपने ढंग से सभी लोग इकट्ठे होते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी जो स्पीचेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उनकी जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी एग्जांपल है, नेशन फादर है। हैमिल्टन वासियों की तुम अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीवीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लब्भण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवे टायर दी लोड है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जद तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल प्राइस ते परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, 500 दी सीधी बचत, तो फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब आपके लिए बहुत बढ़िया, आपको अगर आपने पूजा का सामान लेना है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं 8 अक्टूबर से, तो आप जरूर अगर आपको पूजा का कोई भी सामान चाहिए तो इंडिया सजावट पूजा हट तो लीजिए, सुनिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अगर आपके लिए अकाउंटिंग का अपना HST फाइल करना है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिएगा 416-302-8135। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, ये भी लता जी और मुकेश जी का गाया।

0: जो है उनकी थोड़ी सी आवाज हम किस्मत वाले हैं कि उनकी आवाज हमें ये जो थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये जो चैनल्स बने हुए हैं वहाँ से हमको उनकी आवाज सुनने का मौका मिल रहा है। तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 अक्टूबर वाला दिन है ये बड़ा खास है, हिस्ट्री बनी है, ऐतिहासिक दिन है। दो लोगों के, हमारे भारत के जो खास लोग थे जिन्होंने बड़ा योगदान दिया।
1: An indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike power that I can see. Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet, they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers.
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

जैसा बालक पाए सुपाई, लाख अपराध कमावे। कर उपदेश छिड़के बहु पाते, बहुड़ पिता गल लावे। पिछले औगुण बख्स ले प्रभ, आगे मार्ग पावे। हरे अंतर जामी सब विद जाने,

माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल है सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया बाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम तिहाया

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स .ca।
2: GTA दे होम बायर्स मिस ना कर जायो। पेराडाइज डेवलपमेंट्स सेल कर रहे ने टाउन होम अते डीटैच कर मिल्टन, ब्रैम्पटन, सीटन अते विटबी दे विच। कीमत सिर्फ 6,29,990 डॉलर तो ते नाल 1,30,000 डॉलर तक दे डिजाइनर फिनिशेस, HST रीबेट्स अते बहुत वडिया सेविंग्स दा फायदा लो। आज ही विजिट करो paradisedevelopments.com, paradisedevelopments.com।
3: मैं थोड़ा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट लगियां गंभीर सट्टा, पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रिहा है कि असी कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिसते वो सचमुच ही हकदार हैं। थोड़ा अपना वकील, वकील ब्रिज मोहन। कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
4: JS होम इंप्रूवमेंट वालों एक वेरी गुड न्यूज, हुण तुसीं उहनां कोलों वेरी वेरी बेस्ट बीम सेंट्रल वैक्यूम सिस्टम भी लै सकदे हो। सेंट्रल वैक्यूम $500 तो शुरू होंदे ने, गराज डोर ओपनर लिफ्ट मास्टर दे $350 तो, फुल गराज डोर $349.99 तो। पिछले 30 सालों तो तुहाडी सेवा विच JS होम इंप्रूवमेंट एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन बिडे सिस्टम, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस। 9057890333, 1098 पीटर रॉबर्टसन एट टोरबन क्रोल बाग प्लाजा, 905-799-0333।
2: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट, रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट, या पहुंचो 10,970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी, सॉल्ट लस्सी, मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री। हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई भी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां, फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम, ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे $2.99 दे विच, अमृतसरी कुलचा विद चना $7.99 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा $3.99। सब्जी मार्केट ओपन 24/7।
5: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਕੂਨ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਲਿਵਾਨਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸਪਾ। ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਸ 100% ਹਾਈਜੀਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸਾਜ ਥੈਰੇਪੀ, ਪ੍ਰੀਨੇਟਲ ਅਤੇ ਪੋਸਟਨੇਟਲ, ਗਲੋਇੰਗ ਹਾਈਡਰਾ ਫੇਸ਼ੀਅਲ, ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਅਰ ਰਿਮੂਵਲ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਕੰਟੂਰਿੰਗ। ਅਤੇ ਹਾਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰੋ। ਪਤਾ 534 ਪਾਰਕਹਸਟ ਸਕੁਆਇਰ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-811-5385। ਲਿਵਾਨਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸਪਾ, ਜੋ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: ओ यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
5: रेडियो आवाज
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200
7: आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जांदी है पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस दे लई लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इनसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इंफॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200

चलिए चले हम फैक्टर से डालते रेडियो वाज महामद सिंह बैनीपालिक और फिर तो खुशी और गम तो पर उठ के जड़ा हैगा कि आनंद पिया मेरी माए सतगुर में पाया सतगुर की कृपा दे नाल अज दा खूबसूरत दिन कि जिथे सुरमई सवेर जिंदगी दे बराग वर्गी अलादीन दे चिराग वर्गी जिवें संघणे बोड़ां दी छां जिवें मूँह विच डुब्बी मां ठंड वर्गी खंड वर्गी दोस्ती दे सच वर्गी खुशी न भरे गच वर्गी मेरी सत श्री अकाल एक बार फिर तो प्रवान करो।

0: सरदार इसमें ब्रिजी ने ब्रिजी कैसे हैं आप?
1: ऑलवेज
0: पूरे जोश के साथ
1: ग्रेट
0: ग्रेट। और ब्रिजी जड़ा हैगा एक आयुर्वेदिक जड़ा हैगा तरीके नाल थोड़े

0: आप जब हमें अंदर लेके जाते हैं, मैंने चार विजिट आपके साथ की, पांच फर्स्ट विजिट में मेरे बॉडी जो थे गठा बनी हुई ऐसी, ब्लड सर्कुलेशन वॉज नॉट एक्यूरेट. वो क्या था जो आप बोलते थे? नॉट्स बनी थी?
1: नॉट्स है जी, नॉट्स.
0: नॉट क्यों बनती है?
1: बॉडी है ना जी, बॉडी में नॉट्स कभी कभी आए.
0: खून का बहाव सही नहीं है. ठीक है. नंबर टू, ए पोटली ना मालिश करता, जिन्नी सोजिशा नु जड़ी गर्माहट है वो खत्म कर दिया. नंबर तीन, जिन्हें नींद नहीं आती, ये थर्ड आई होंगी अपने नक के उपर अखा के विचकार, वो शुरू तरह तेल पाँदा है, वो तेल पा के अपनी तीसरी अख नू सुख चैन दिता है. सो बॉडी का कोई भी कंसर्न, रक्त पान तो लैके कोई भी प्रॉब्लम, इको सोल्यूशन, इको ना इको थां ब्रिजी की धर्मशाला
1: जी.
0: ब्रिजी की धर्मशाला जी है मार्टिन गुरुद्वारे के कोल, हरिदा केरला आयुर्वेदा के नाते
1: जी.
0: आज आपके पास अपॉइंटमेंट्स हैं?
1: अवेलेबल है जी.
0: जब लेडीज एंड जेंट्स लिमिटेड,
1: नहीं नहीं
0: बंदा डर जाता है, नहीं लोग भागते जाना कि लिमिटेड है ले लें, है ना. ब्रिजी को अपॉइंटमेंट अवेलेबल है
1: जी.
0: लेडी और कोई भी मेल और फीमेल दोनों कॉल करो, दोनों वास्ते अलग अलग सर्विस देने वाले लोग ने. फीमेल जी है औरत है, औरतों सर्विस देंगे, वो जो कि एक्सपर्ट लोग ने, तेल बड़े खास ने इन्हों, इन्हों को पंचकर्मा तो लैके शिरोधारा तो लैके आपको एक लेडी ने कॉल किया था, उसने द्वारा हमें कॉल नहीं किया, मैंने आपको बोला था उसको बोला हमें कॉल करे,
1: नहीं किया जी, मैं फोन किया उसको.
0: अच्छा ठीक है. सो ब्रिजी का नंबर क्या है?
1: 6476191369
0: पंजाबी में.
1: 6476193
0: फिर द्वारा
1: 6476193
0: सो ब्रिजी पंजाबी बन गया, जिवें पंकज पंजाबी बन गया, ऐसे ब्रिजी पंजाबी भी बन गया. पंजाबी दी मालिश कर करके पंजाबियों वर्गा बन गया
1: जी.
0: कैसे लगे पंजाबी लोग आपको?
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया.
0: बढ़िया ना
1: या.
0: बस इन्हें आदत ठीक हो जाने, जी चिगली निंदिया जिन्हें को काम किया उन्होंने गाला कढ़ी जानिया, जिसे ना किसी ने पार्टनरशिप कर लिया वो नर्क हो गया, जिन्हें ना किसी ने रिश्ता पै गया वो माड़े हो गए, जिन्हें किसी ने मदद करती वो मगर पै गए. मतलब ये चीजें इन्हें ठीक हो जाना
1: जी.
0: सच्ची कहना रब वर्गे लोग ने इन्नी दिलदारी. गुरु नानक पातशाह ने पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत कहने वाले गुरु पातशाह जिन्होंने धरती की उत्पत्ति की गल की है. तेरा फोन बज रहा ब्रिजी, उठा लेना बाद में, पहले भी नहीं. जे थोड़ा फोन नहीं मिलता टैक्सट मैसेज करनी है, लिमिटेड ये को अपॉइंटमेंट ने. $55 लेंदा, पिछले 3 साल तो इन्हें रेट बताया, जिम्मे मैं नहीं बताया. तो जो आया सी मैंने कहा जिन्ने पैसे दे होंगे उन्हें दे दी, जिन्हें नहीं देंदे ना दी. तो बहुत काम किया इस आदमी ने, सेवा भी लोगों की बहुत हुई. 6476193 कोई बीमार है, रियल बीमार है, मतलब चुस्त बंदा ना कोई कॉल करे, चलाक बंदा ना कॉल करे. जो मैं कहना धौन चकीला जिन्हें फसया मैंने कॉल ना करे, हंकार जिसे कर दिन चाहना वो तो मेरे गले ना करे क्योंकि मेरी उन्होंने एनर्जी मैच नहीं होनी. 6476193 से कॉल करो. तुसी एक मशीन च बिठाउंदा, मशीन का क्या नाम है?
1: स्वेदना.
0: स्वेदना स्वेदना चूस जाती है पसीने ना तो
1: आयुर्वेदिक डिटॉक्स
0: मशीन है. मैंने दो ही मेरे वाल देखने लगे स्वेदना कोई लेडी नहीं है. स्वेदना मशीन है जी. 647
2: तिनाए ते क्लियर कर तो सर.
0: हां मैं ताई कहना कान जो परनो गए सर, स्वेदना पसीना कर देंदे बॉडी च. स्वेदना 6476191369 अंडर 100 रुपये च टॉप दे होके निकलो अंदर केरा बड़ो अंदर 1.5 घंटा इन्हें ला के आओ
2: फुल वर्गा कर देंगे.
0: मैं कहना जब तू जाके देखी
2: ठीक
0: तेरी बॉडी दी सारियां डेफिशिएंसीज दस दू, कि सोजिश है, कितने प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, जे गर्दन के कोल अकड़ाहट है, इतने स्ट्रैस किन्ना हैगा, सब रिलीज कर दूंगा. जोर लाऊंगा पूरा है अपने हत्थों के नाल. 6476193 बहुत
1: थैंक यू जी. थैंक यू सो मच.
0: गाना सुनो फिर मैं काली एंड किनारा कर. 6476191369 6476191369 ब्रिजी नू कॉल करो. ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਪੀਡ ਐਕਸੈਸ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪੌਂਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਦਲ. ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ. ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਵਾਨੂ ਬਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਹੋਲਡ ਪਿਆ ਹੈ. ਸ਼ਵਾਨੂ ਬਈਆ ਹੋਲਡ ਰੱਖੀਏ ਪਲੀਜ਼. ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ.

0: या अपील ते चला गया होवे इमीग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमीग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
1: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381
1: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही ले हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
4: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: आज ही आओ 170 गिलडन रोड जिन नंबर 17, 170 गिलडन रोड जिन नंबर 17, टेलीफोन नंबर है 6473021322, केसो संताली 302-1322, जेलो टायर सेंटर।
1: टेडर एवरी सूट कर दिया जटानू।
2: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure, 10 to sham 7 baje tak on dine-in and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. Hey, yummy deals is Simply Indian. This sariya hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian.
0: सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको इक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है नदी तंदूरी ग्रिल बाहरले पासे इतो तानू बने बने हर फूड मिलता है नाल दी ना रा मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्क ड्राइव फिफ्टन फेंडर बे ब्रैम्पटन 9985 मकवीन ड्राइव ब्रैम्पटन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन 33 फार्ली ड्राइव गोल्फ और 600 हैस्पलर रोड कैम्ब्रिज नमी खुनी ब्रांच 25 सेंट्रलवुड पार्कवे कैनेडी के सेंट्रलवुड पार्कवे के नेड़े आओ हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड ते
3: चलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
0: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905 564 64 44
3: 905 56

0: हाय रब्बा हुण की बनू
1: जे तुसी कार इंजरी च इन्वॉल्व हो गए हो या सट लगी है गलती तुहाडी या किसी होर दी तो याद रखो इको नाम बराड टेंबर पर्सनल इंजरी लॉयर
2: इना कोल है पांच तड़लेदार कैनेडियन जंपा लॉयर्स दी टीम
1: जो दवांदे ने वध तो वध लीगल सेटलमेंट नो अपफ्रंट फी इना दी टीम कोल तक

0: चक्कर लगाओ।
1: एक बार फिर तो बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। उम्मीद है कि तुसी प्रोग्राम पूरा इंजॉय कर रहे हो। कुछ समय दा टाइम मेरे कोल हो रहा है तुहाडे नाल, ते उम्मीद है कि तुसी सारे प्रोग्राम दे नाल नाल अपने गाने नू इंजॉय कर रहे होवोंगे। कोशिश मेरी यही हुंदी है कि मैं सारे गाने सुना के जावां, बट अज मेरे ख्याल च सारे लगणे नहीं। बट एनीवेज नेक्स्ट फरमाइशी गाना तुसी सोनी पाबला जी दी आवाज़ च इंजॉय करो, ते सुंदर ओ देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: solution to promote your business. Desh Pradesh Prime Time Radio and TV. Tohade Angsang 24 ghante satto din. Hun tak Desh Pradesh Prime Time Radio hazara hi business di grand opening live on location nal karwa chukya hai. Te karwa rya hai. Impossible is nothing. Tusi bhi apne business vich vadha karan vaste Desh Pradesh Radio da live on location Friday Saturday karwao. For bookings call Tejinder Sidhu at 416-725-2551 416-725-2551.
1: ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो बहुत निघा स्वागत है। उम्मीद कर दी है कि तुसी आज दा प्रोग्राम इंजॉय किया होगा। हुण अगे विंटर सीजन आ रहा ते तुसी एसएस लॉन केयर एंड स्नो रिमूवल वाले नूं हुणे तो बुक कर सकते हो। ते इह तुहाडे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल हर जगह दे उपर स्नो क्लीयरिंग दा काम करनगे, सॉल्टिंग एंड डी आइसिंग भी करनगे। पूरा सॉल्ट पाके जाणगे ते जिथे किते भी आइस जमी होएगी वह प्रॉपरली रिमूव करके जाणगे, क्योंकि इन्हां दे कोल प्रोफेशनल ग्रेड दी मशीनरी हैगी है। सारे इक्विपमेंट्स बहुत कमाल दे ने, तुहानूं सुपीरियर रिजल्ट्स दिंदे ने। 100% सैटिस्फैक्शन गरंटी है। तुसी चाहुंदे हो कि वीकली काम करके जाण, वीकली स्नो वगैरह रिमूव कर जाए करन, या बाई वीकली दो हफ्तिया बाद, या फिर तुसी चाहुंदे हो कि जदों स्नो पैंदी है उस टाइम ही रिमूव करके जाण, तां जरूर इन्हां दे नाल तुसी अपनी बुकिंग करवा लो। फ्री एस्टीमेट लो, नंबर है 4376551984 4376551984। SS लॉन केयर एंड स्नो रिमूवल वाले दा नंबर है। ते काफी सारे गाने अज सीगे, फरमाइशां आईयां ऑलमोस्ट 18-19 गाणियां दियां। ते कोशिश मेरी हुंदी है कि मैं तुहानू सारे गाने सुनावां, बट थोड़े गाने मेरे तो अज रह गए ने, उहदे लई माफी चाहुंदी हां। ते मंडे वाले दिन कोशिश रहेगी कि जिहड़े वी गाने तुसी जिहड़े रह गए ने मैं सुना देवां, जिहड़े एक दो गाने मेरे ख्याल च रह जाणगे हुण। ते उम्मीद है कि तुसी ओवरऑल प्रोग्राम नूं इंजॉय कीता होएगा। ते मेरी मुलाकात तुहाडे नाल हुण मंडे वाले दिन होएगी। प्रोग्राम तों बाद तुसी कोई भी इनफॉर्मेशन लैणी है रिगार्डिंग प्रोग्राम दे, रेडियो दे, अपनी बिजनेस लई तुसी प्रमोशन चाहुंदे हो, तां तुसी नंबर नोट कर लो 416-725-2551 416-725-2551 या 416-457-3381 416-457-3381। इन्हां दोनां नंबर से तुसी एनी टाइम कॉल, टैक्सट और वट्सएप कर सकते हो। ते उम्मीद है कि सारयां दा ही वीकेंड बड़ा वधिया निकल रहा है। ते हसदे रहो हमेशा, मुस्कुराते रहो हमेशा, पॉजिटिव रहो। चंगी चीज़ां आपां सोचांगे तां चंगी चीज़ां अपने नाल होणगियां। ते मैं मनप्रीत कौर तूर इत्थों ही तुहाडे तों इजाजत लैनी हाँ। मेरी मुलाकात हुण तुहाडा मंडे नूं 3 बजे होएगी। उदों तक इजाजत दिओ, सत श्री अकाल।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत. कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600. वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स. विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स. यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770.
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउस योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905 4573232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 jobs completed, 16 installers team, cover across Ontario, more than 9% in home stars last many years. Windows and Door manufacturer, not dealers. Yash Windows and Doors, 416-732-3600 or 416-674-7770. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇਮ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ there is no mediator, manufacturer hai aur direct manufacturer ton tonu very good price and good quality de yash windows and doors de upar jaake tusi information le sakde ho. Yash ji, swagat hai tuhanu.
1: thank you very much. aapko sare shrotao ko namaskar karta hu
0: ji. welcome. aur thodi si information de please dharam ji, yash windows and doors ke bare mein.
1: yash windows and door 2012 se window and door ki manufacturing karti hai. toronto based hamari factory hai और अक्रॉस ऑन्टारियो में 34 इंस्टॉलर्स के साथ हम विंडो डोर जो बनाते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं. विंटर ज्यादा दूर नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपके घर में विंडो डोर बदलने की जरूरत है तो अभी फास्टेस्ट 4.5 वीक में हम जॉब कंप्लीट कर देते हैं अक्रॉस ऑन्टारियो. सो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट
0: 416-732-3600. यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर है. इस नंबर पर जाके तुसी इनफॉरमेशन कॉल करके एक्चुअली इनफॉरमेशन लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं और डायरेक्ट तुसी इन्हां दे नाल डील करनी है, विचकार कोई मीडिएटर नहीं है, तो वेरी गुड प्राइस ऊपर तो गुड क्वालिटी का सामान मिल जाएगा. ओके यश जी, आप लोकल जीटीए में ही सर्विसेज देते हैं या आउट ऑफ जीटीए भी अगर किसी ने करवाना हो तो?
1: सर्विस देते हैं. अभी कैलगरी शुरू हो चुकी है, वैंकूवर में शिपमेंट जा रही है, तो मोस्टली नेशन वाइड अब खुल रहा है. लेकिन अक्रॉस ऑन्टारियो, पूरा ऑन्टारियो हमने कवर कर चुके हैं. हमारे 2 शोरूम्स हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं, तो पूरे ऑन्टारियो में हम सर्व करते हैं.
0: और इस टोरंटो में जीटीए में अपनी लोकेशंस बता दें यश जी.
1: ये हमारी 2 लोकेशंस है, 185 कार्लिंग व्यू ड्राइव यूनिट 6 इटोबिको, वहाँ हमारी फैक्ट्री है. अगर शोरूम में जाना है तो 8917 द गोर रोड, सब्जी मंडी के प्लाजा में, सब्जी मंडी के एग्जैक्ट सामने ही यश विंडोज का शोरूम है.
0: बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त. 416-732-3600 ब्रैम्पटन वासियों, तुहाडे लई इट्स अ गुड न्यूज और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुहानू टोरंटो ऑल द वे जाण दी जरूरत नहीं है. ब्रैम्पटन ईस्ट दे विच तुहानू ये सर्विसेज, एक्चुअली ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਗੌਰ ਰੋਡ, ਗੌਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ 416-732-3600 ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਜੀਟੀਏ. ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਰੋਮ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰ, 732-3600. ਯਸ਼ ਜੀ, ਧਰਮ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.
1: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਜੀ. ਔਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂੰ ਹੀ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ. ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਲਿਟਲ ਅਬਾਊਟ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ. ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਨੋਇੰਗ ਅਵਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਵਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲਡ.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.

0: माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कढ़ाई, शिनवारी चिकन एंड गोट कढ़ाई, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज

अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नो सारे परिवार को बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुशामदीद एंड स्वागतम

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ मैं देख तेरी इस गल नू ना सीरियसली होए लग गई
0: हां
1: तू एवे कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं हुंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हां
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना
0: यार किद्दां दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिंट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: केड़ा ऑर्गेनाइजर
0: जिने बच्चा ऑर्गेनाइज कीता पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना
0: बोल वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी किन्ना काम करदे हुंदे ने दसी जरा मेनू
0: नहीं भावे कुछ भी दे दा ए थोड़ा
1: दीस ऑलवेज बच्चे भी देखण काम भी देखण घर भी देखण डॉलर भी देखण सारा कुछ देखण है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ ओहो ये को प्रोफेशन जो प्रोफेशन मनु चंगा लगा नहीं
1: हेलो
0: नाले मुक दी गल है वे जे अगले मेरे को ये काम करावणगे कल नु भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देन फिर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दी
2: गल्लां ए मेरे नाम जी मेरा बिजनेस नहीं है चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं पड़ती बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $5 का प्रसाद चढ़ाऊंगा बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो
3: ओए मैनू क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं देव तात्रे नु कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609